नर निह केवल निर्भउ नाउ, अनाथ है नाथ करे बल जाओ, पुनरप जन्म नाही गुण गाओ, अंतर बाहर एको जाने गुर कै सबदे।

कै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा, जो दिसै सो आस निरासा, काम क्रोध बिख भूख प्यासा, नानक बिरले मलह उदासा, गौड़ी महला पहला, ऐसो दास मिलै सुख होई, दुख विसरै पावै सच सोई, दर्शन देख भई मत पूरी, अठ सठ मज्जन चरण है धूरी रहाव, नेत्र संतोखे एक लिव तारा, जिह वा सूची हर रस सारा, सच करनी अब अंतर सेवा, मन त्रिपतास्या अलख अपेवा, जह जह देखाओ तह तह साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावै सोझी होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, कर किरपा राखाओ रखवाले, बिन बूझे पशु भए बेताले, गुर कहया अवर नहीं दूजा, किस कहो देख कराओ अन पूजा, संत हेत प्रभ त्रिभवन धारे।

काम चित पर वस से काम दाम चित पर वस से बिन पिर त्रिपत न कबहू होई पाड़ पाड़ पाड़ पाड़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा जौ चात्रिक जल प्रेम प्यासा जौ मीना जल माह उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै ना लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै।

आए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहथ सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिस कौ वाह वाह जे वाट दिखावै तिस कौ वाह वाह जे शब्द सुनावै तिस कौ वाह वाह जे मेल मिलावै वाह वाह तिस कौ

गुर शब्द विचार चंचल मत त्याग पंच संघार अंतर साच सहज कर आवह राजन जान परमगत पावह सच करनी गुर।

0: उपजंप दर्शन की जय ताका, राम न जपहौ अपाग तुम्हारा, जोग जोग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित घट अनहत बाजे तूरा, सो जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार, जिनका हृदय हर हर सोई, तिनका दर्स परस सुख होई, सर्ब जिया मह एको रवै, मनमुख अहंकारी फिर जूनी भवै, सो बूझै जो सतगुर पाए, होमै मारे गुर सबदे पाए, अर्ध उर्द की संध क्यों जानै, गुर मुख संध मिलै मन मानै, हम पापी निर्गुण कौ गुण करियै, प्रभ होए दयाल नानक जन तरियै, सोल है अष्टपदिया ग्वारेरी गौड़ी किया।
1: इत्थे एक सवाल भी आया सी, कहिंदे सी कि अंकां दी गिणती बारे दुबारे दस दिओ, ते ओ हुण याद भी आ गया। इत्थे लिखिया होया आया सोल है अष्टपदिया ग्वारेरी गौड़ी की।

उर दी बिन ज्ञान बीचारा किरत भया अद उर दी बिन ज्ञान बीचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सह न अंधियारा जगत जग बिनसत हम देखिया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुकत द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या लै आया ले जाए क्या फस है जम जाला क्या लै आया ले जाए क्या फस है जम जाला डोल बद्दा कस जेवरी।

0: नदर करे प्रभ आपणी गुण अंक समावै नानक मेल ना चुकई लाहा सच पावै
1: दलेंकड़े होने चुकई
0: नानक मेल ना चुकई लाहा सच पावै गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तौ होए नबेरा गुर प्रसादी बूझ ले तौ होए नबेरा घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटिए।

देखो कोए, सास्त सिमरत सोद देखो कोए, विण नावै को मुक्त ना होए, जुग चारे नाम उत्तम सबद बीचार, कल मह गुर

0: संसारा हौ मैं मैला इहो संसारा नित तीरथ नावै न जाय अहंकारा बेन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हौ मैं मारै गुर कै शबद पंच संघारै आप तरै सगले कुल तारै माया मोहे नट बाजी पाई मन मुख आंद रहे लपटाई गुरमुख अलिपत रहे लिव लाई बहुते भेख करै भेख धारी अंतर तिसना फिरै अहंकारी आप ना चीनै बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत भरम भुलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी ग्रेही अंतर साच लिव लागी नानक सतगुर सेव है सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह प्यासा तिस ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा
1: इत्थे जी विश्राम लोना तिस ते उपजे देव मोह प्यासा देव ते फिर लगूगा अर्थ वास्ते
0: तिस ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा हम हर राखे सत गुरु मिलाया।

मन है पांड पराला, मानमुख अज्ञान को मार्ग पाए, मानमुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम बिसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजै पाए, माया का मोहताज पंडित कहावै,

अनहद बाणी शब्द बजाए सतगुर ते कवन कवन ना सीधो सतगुर ते कवन कवन ना सीधो मेरे भाई भगती सीधे।

मन ही मन सवारिया, भय सहज सुभाए, शब्द मन रंगिया, लिव लाए, निज घर वसिया, प्रभ की रजाए, सतगुर सेवै।

मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाय, गौर कृपा ते मिलै मिलाय, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ

कृपा धार सत संगत मेल लाए प्रभ हर हृदय हर गुण सार रहाओ से भगत हर भाव दे जो गोरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मुए रहाना

हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगति मल लह जाय मन कर हला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया

मन करहला विचारिया विचार देख समाल बन बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुर गोविंद समाल रहाओ मन करहला विचारिया।

जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल की रीना ता ते रमैया घट घट चीना सहज सुहेला फल मसकीनी सतगुर अपनै मोहे दान दीनी रहाओ जब इस कौ एहो जान समंदा तब सगले जब इस कौ जब किस कौ एहो जान समंदा जब किस कौ एहो जान समंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन है चुकाई ता ते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी धारी तब इस कौ है मुश्किल भारी जब इन करना हार पछाता तब इसनो नाही किछ ताता जब इन अपनो बाध्यो मोहा आवै जाए सदा जम जोहा जब इस ते सब बिनसे भरमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किछ कर माने भेदा तब ते दुख डांड अर खेदा जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया जब एहो तावै माया अर्थी नह त्रिपतावै नह तिस लाथी जब इस ते एहो होयो जौला पीछे लाग चली उठ कौला कर कृपा जौ सतगुर मिलियो मन मंदर मह दीपक जलियो जीत हार की सो जी करी तो इस घर की कीमत परी करन करावन सब किछ एकै आपे बुद्ध बीचार विवेकै दूर ना नेरै सब कै संगा सच सा लाहन नानक हर रंगा गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा तिस कौ मिलिया जिस मस्तक भागा तिस कै हिरदै रविया सोए मन तन सीतल नह चल होए ऐसा कीर्तन कर मन मेरे ईहा ऊहा जो काम तेरा रहाओ जास जपत।

अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सिजै। जास जपत कोट मिटहै अपराध, जास जपत हर होवह साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोटै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास। जास जपत एह अगन ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा। जास जपत मुस्कल कछु ना बनै, जास जपत सुन अनहत तुनै। जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी।

सहज कथा मह आत्म रसिया ताकै संग अभिनासी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया।

गुर भेटियो सच धर्मा, जा कै सहज भया सो जाणै, नानक दास ता कै कुरबाणै, नानक दास ता कै कुरबाणै। गौड़ी महला पंजवा। प्रथमे गर्भ वास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया, भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गवन करह गे बपुरे। कवन अस्थान जो कब हो न टरै, कवन सबद जित दुर्मत हरै। रहाओ इंद्रपुरी मह सर पर मरणा, ब्रह्मपुरी नहचल नहीं रहना।

0: भरत अर्पेदा, देनस रैन भरत अर्पेदा, शास्त्र सिमरत बिन सह
1: शास्त्र सिमरत
2: शास्त्र रारा नहीं पैर च
0: ठीक है
2: चलो फिर शास्त्र पढ़ लो
3: शास्त्र सिमरत बिन सह गे बेदा पैर वाला रारा तत्ते दे ला लियो जी जिथे नहीं लगिया होया शास्त्र शास्त्र तत्ते दे पैर विच रारा ला के
0: शास्त्र सिमरत बिन सह गे बेदा तीरथ देव देहुरा पोथी।

पास पंखी अनेक जोन जिंदु सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना सदा आनंद नहचल सच थाना तहा संगत साध गुण रसै।

जिस कृपा करै, नह चल थान साध संग तरै, गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिस है वडियाई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोए जे दुबिदा मार्ग वावै, इस है मार राज जोग कमावै, रहाओ जो इस मारे तिस कौ पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दर्ग है सिजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतेवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो नह चल तनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज ध्यानी।

0: झूठ ना धोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जा कौ भय कृपाल कृपा निद, तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबिदा जा की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा।
1: इस पिछले शब्द विच एक पंक्ति आई सी, जो इस मारे सोए सुगयानी, इस सुगयानी पाठ इकट्ठा ही करना है। आम तौर ते सुगयानी पाठ इकट्ठा बहुत घट आउंदा है, सो वखरा ही हुंदा है। जो इस मारे सोई सुगयानी, सुगयानी दा अर्थ भी श्रेष्ठ ज्ञानवान पुरश, वह सुधवा सकदा है। सुगयानी पाठ इकट्ठा करना। हाँ जी।
0: गौड़ी महला पंजवा। हार स्यो जुरै ता सब को मीत, हार स्यो जुरै ता नहि चल चीत, हार स्यो जुरै

0: राम बिन सिमरन जैसे सिंह शतारा भूलह कूर साकत मुख कारा।
1: ये जड़ा पाठ बिन सिमरन जैसे सिंह ये जड़ा गंगे का उच्चारण सही तरीके दे नाल करना सिंह। हाँ जी
0: बिन सिमरन जैसे सिंह शतारा बिन सिमरन जैसे सिंह छतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान भ्रिष्ट फिराही बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंध ना पाया बिन सिमरन है आत्म घाती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस संत संग मिलाया जिस भया कृपाल तिस सत संग मिलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परमगत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाओ गुर प्रसाद मोहे मिलया थाओ रहाओ गुर कै बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मेटिया मेरा आप गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर कै बचन कीनो राज जोग गुर कै संग तरिया सब लोग गुर कै बचन मेरे कार्ज सिद्ध गुर कै बचन पाया नाओ निध जिन जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिए जम की फासा तिसकी कटिए जम की फासा गुर कै बचन जाग्या मेरा करम नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा तिस गुर कौ

गुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर की रेण नित मज्जन कराओ, जन्म जन्म की होमै मल हराओ, तिस गुर काओ चूलावो पाखा, तिस गुर काओ चूलावो पाखा, महा अगन ते हाथ दे राखा, तिस गुर कै गृह ढोवाओ पाणी, तिस गुर ते अकल गत जानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, तिस गुर कै गृह ढोवाओ पाणी, जिस गुर ते अकल गत जानी, तिस गुर कै गृह पीसाओ नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत,

0: जो अंत निभा है सो साजन मेरा मन चाह है हर की प्रीत सदा संग चाल है दयाल पुरख पूर्ण प्रत पाल है रहाओ बिनसत नाही छोड़ न जाए जह जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्ब सुख भोग पूर्ण पुरख नवतन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्ब सो नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया से ही होए भगत जिना किरपारिया हों वारिया हर वारिया रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पै हारिया मैं तकी ओट संताह ले हो उबारिया मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया गुर नेव नेव लागो पाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया सब गुण किस ही नाहे हर पूर भंडारिया चहो दिस जपिय नाओ सूख सवारिया मैं आही ओढ़ तुहार नानक बलिहारिया गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर ना हारिया मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया हर दरगह सुबावंत बाह लुडारिया जन नानक लद्दा रतन जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया गुरसेवा भौजल तरिय कहो पुकारिया गौड़ी महला पंजवा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद नारायण हर रंग रंगो जप जिहवा हर एक मंगो रहाओ तज होमै गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मुयो मोहन नाम सदा रव रहयो कोट मधे किनै गुरमुख लहयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हिरदय गावहो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहयो दुख अंधेरा घर ते मिटयो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलयो जिन सेविया सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत तरयो महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए मेरा मन सब सुख पायो रहाओ बलतो जलतो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीप आयो पावक
1: ये पाठ बलतो जलतो तौकिया ये तौकिया पाठ कठा ही करना है तौकिया दा अर्थ हुंदा है भी त्रंकना पाव छिड़कना ते इसलिए ये पाठ तौकिया तौकिया वक वक नहीं करना तौकिया कठा ही पाठ करना है
0: बलतो जलतो तौकिया गुर चंदन सीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीप आयो पावक सागर गहरो चार संतन नाव तरायो पावक सागर गहरो पावक सागर गहरो चार संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा आ पायो नौ खंडन दुख भंजनो पौ पौ खंडन दुख भंजनो पौ खंडन दुख भंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत ओट आयो
1: ये भी पाठ समृथ मम्मे नु सियारी नाल आया बहुत घट आउंदे पर जिथे सियारी होवे उथे सियारी दा उच्चारण भी करना है पैर चरारा भी है जिवें उच्चारण किया गया है सही है पर विद्यार्थियों विशेष करके ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਮਰਿਥ ਕਰਨਾ ਹੈ।
0: ਅਨਾਥ ਹੈ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ, ਸਮਰਥ ਸੰਤ ਓਟ ਆਇਓ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਹ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੇ ਆਇਓ। ਗਾਉੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਰੰਗ ਸੰਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਭੁਗਾ, ਇਨ ਸੰਗ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਹਉ ਸੰਚੋ ਹਉ ਖਾਟਤਾ, ਸਗਲੀ ਅਵਧ ਬਿਹਾਨੀ ਰਹਾਉ, ਹਉ ਸੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਉ, ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੁਝੈ ਸਮਾਨੀ, ਜੋਬਣਵੰਤ ਆਚਾਰ ਕੁਲੀਨਾ, ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਏ ਗੁਮਾਨੀ, ਜੋ ਉਰਝਾਇਓ ਬਾਦ ਬੁੱਧ, ਕਾਮ ਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਸਰਾਨੀ।

0: नहीं करना, मैं मत, यही पाठ शुद्ध है। हाँ जी,
1: मैं मत जोबन गर्भ गाली दुदा थनी ना आवे।
0: मैं मत जोबन गर्भ गाली दुदा थनी ना आवे।
1: मैं मत जोबन गर्भ गाली दुदा थनी ना आवे।
0: ये जिहड़ा शब्द दुदा, ये भी दुद्ध का वाचक है, इस वास्ते दद्दे दे उत्ते थोड़ी जी जिवें अधक ला के बोली देना, थोड़ा जोर दे के बोलना, दुद्धा थनी ना आवे।

0: धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर धारे नाहा बिन घर वास ना पाए नाहा बिन घर वास नाही पुछो हो सखी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसह साच सुहेलिया सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहो जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समाणिया मिल सखी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो सबद सनेहा सबद साचा गुर दिखाया मन मुखी पछो तानिया निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन सबद नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलहो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया
1: ये भी पिछे जिहड़ा पाठ है साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो खुले मुंह वाला उड़ा इत्थे खास जदों पाठ करना ते खुले मुंह वाला उड़ा इनू लमका के मगरों नवेलो इउं उचारण करना सीधा नवेलो उचारण करांगे ते फिर लल्ले नूं हौड़ा लगदे उड़े दा नाल उचारण करना खुले मुंह वाला उड़ा नवेलो

मिलाई बिन प्रीतम दुख पाए, फिर छोड़ड़ी जियो कवन मिलावै, रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावै, शब्दे सुहावै ता पत पावै, दीपक देह उजारै, सुन सखी सहेली साच सुहेली।

0: साध सा धन बिना करे जियो हर के गुण सारे। इथो आरंभ होना है जी पाठ। हम अंग 243 पोथी साहिब प्रकाश कर लो ते पाठ असी प्रेम अदब सत्कार श्रद्धा भावना एकाग्रता दे सहत सरवण करिए जी।
1: राग गाउड़ी पूर्वी शांत महला तीजा एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद सा धन बिना करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह ना सके जियो बिन हर प्यारे रह ना सकै गुर बिन महल ना पाइय जो गुर कह सोई पर कीजै तिसना अगन बुझाइय हर साचा सोई तिस बिन अवर ना कोई बिन सेवै सुख ना पाए नानक सा धन मिलै मिलाई जिस नो आप मिलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचो आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द सुमा

ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाइयै गुर शब्द है मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारे नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारे सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे एहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे होमै मारे इन बिद मिलहो प्यारे सा धन सोहागण सदा रंग राती सच नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है

0: ज्यो प्यासे क्यों मिलिया प्रभ दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे, मेरा मन तन मोहे लिया जियो। देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही, उदास धन क्यों धीरे। गुणवंत नाह दयाल बाला सर्ब गुणा परपूरे, गुणवंत नाह दयाल बाला सर्ब गुण परपूरे।
1: परपूरे
2: भब्बा शुद्ध बोल के परम पर पूरे।

0: जाहु जा कहियै दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलिया ना कोय
1: कहो ध्यान नाल पढ़ने अनक भेख अर ज्ञान मनन दे नाल शब्द है आम गग्गे नाल ही हुंदा है क्यों आम जदों स्कूलां विच पंजाबी पढ़ाई जाती है जिथे ये नंगा नंजा ते नाना ये नाना अखर आते ने उत्थे कोई नाल जे टीचर ने कहिंदे खाली वो लिखिया हुंदा पर ये खाली नहीं है इहदा मतलब भी गुरु महाराज ने इन्हां दी बाणी विच वरतों कीती है गुरबाणी का कोई भी अखर ना वध है ना घट है वो अपने आप दे विच संपूर्ण है इसलिए गुरु महाराज ने जिहड़ी गुरमुखी की वर्णमाला है उहदे अनुसार गग्गे की थां ते इत्थे गंगा वरत्या ते इत्थे गंगा ही उच्चारण करना है। हाँ जी अगे सरवण करो
0: अनेक अपे

0: भाव है। कोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जाको दिया।
1: तेहे सियारी तत्ते नु सही उच्चारण करनी।
0: कोल महारस अमृत तह पिया, कोल महारस अमृत तह पिया, नानक हर गुर जा को दिया। सलोक गण काले सब दिवस सास, नह बड़न घटन तिल सार। जीवन लोर है परम मोह, नानक तेऊ गवार। पौड़ी गंगा ग्रासै काल तेह, जो साकत प्रभ कीन। अनेक जोन जन्मै मरहै, आत्म राम ना चीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आए, कर कृपा जह आप दिवाए। गणती गणी नहीं को छूटै, काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जह जीवत जपया, प्रगट भए नानक नह छपया। सलोक चित चितवो चरनार बिंद, ऊद कवल बिग सांत। प्रगट पए आप है गोबिंद, नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, धन धन उआ दिन संजोग सभागा। चार कुंट दह दिस प्रम आयो, पई कृपा तब दर्शन पायो। चार विचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक।

दास के पानी हारे दास दासन के पानी हारे छच्छा छार होत तेरे संता अपनी कृपा करहो भगवंता छाड़ सियानप बहु चतुराई संतन की मन टेक टिकाई छार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

0: ज्ञानत सोई संत सोए भ्रम ते की चित भिन्न अंधकूप ते तह कढ़हो जेहे होवहो सो प्रसन्न ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करनै जोग नानक तह उस्तत करो न्याहू कियो संजोग सलोक
1: ते विश्राम वैसे होंदा जां कै हाथ समरथ ते
0: ज्ञान कै हाथ समरथ ते कारण करनै जोग नानक तह उस्तत करो न्याहू कियो संजोग सलोक टूटे बंधन जन्म मरण साध सेव सुख पाए नानक मनहो ना बीसरै गुण निद गोबिद राय पौड़ी टहल करहो तौ एक की जाते वृथा न कोए मन तन मुख ही है बसै जो चाहो सो होए टहल महल ता को मिलै जा कौ साध कृपाल साधु संगत तौ बसै जो आपन हो हे दयाल टोहे टाहे बहु पवन
1: टोहे टाहे टैंकिन
0: टोहे टाहे बहु पवन बिन नावै सुख नाहे तलह जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सत के नानक पाप बिनासे कद के सलोक ठाक ना होती तिन्हो दर जेहे होवहो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते धन धन पौड़ी ठठा मनुआ ठाह है नाही जो सगल त्याग एक है लपटाही ठहक ठहक ठहक माया संग मुए उआ कै कुशल ना कतहु हुए ठांड परी संत है संग बसया अमृत नाम ताहा जी रसया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक उआ का मन सीत लाया सलोक दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खोह प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी
2: ना जदो कई बारी मंगल पढ़ दिया पाठी सिंह आम ही पाठ कर दिया सरवण करीदा नानक दे कर हाथ बहुत इदा सुन मिलता है ये ध्यान रखना है नानक दे कर हाथ गुरु नानक
3: बंदना दे नल्ले ने भी करना लाउंदे ने कई बंदना
2: डंडाउत बंदना हां जी डंडाउत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ गुरु नानक देव साहिब मारे सच्चे पातशाह जी दा नाम वर्त के बेनती दे रूप विच है सच्चे पातशाह मेरी रखिया करो हथ करके ना के घर पाठ आना है आम ही बहुत पारी ये पाठ सुनींदा है नानक दे घर हथ घर नी घर कके दे नाल हां जी
0: पौड़ी डड्डा डेरा इहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संजमो गुर कै शब्द पछान या डेरा कौ श्रम कर कालै जा का तसु नहीं संग चालै वा डेरा की सो मित जानै जा को दृष्ट पूरन भगवानै डेरा नहचल सच साध संग पाया नानक ते जन नह डोलाया।

0: रहत अब टह परे, साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया, नानक लिए समाए सलोक। जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, अणा हो अणा तू अणह छुट है निकट ना जाई हो दूत।
1: अणा पढ़ांगे ना फिर मुरे ऐड़ा लग जांदा इन अणा हो अणा तू अणह छुट है, कल्ले नाणे दे नाल ही कन्ना जी अणा पढ़ांगे तो फिर अगे ऐड़ा लग जांदा गीतर।
2: साध संगत जी एक बेनती है, इस वेले पाठ बोध विच तां हुण अपने कोल समां नहीं वी मुहार नहीं पढ़ाई जावे, पर फिर भी जिन्होंने मुहारनी नहीं पढ़ी ना एक बारी मुहारनी जरूर पढ़ो किसी उस्ताद दे राही, जिस तरह भी ऑनलाइन पढ़ लो भावे उत्थे ये बरीकियां उचारण दियां समझ आउणगियां। मैं सारी संगत नूं बेनती करदा जिन्ने भी सुणदे ने ये मुहारनी जरूर पढ़ो इहदा अभ्यास जरूर करो जी।
0: अणा हो अणा तू अणह छुट है निकट ना जाई हो दूत, पावड़ी अणाणा रण ते सी जीऐ आत्म जीतै कोए, हौ मैं आन स्यो लार मरै सो सोभा दू होए, मणि मिटाए जीवत मरै गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीतै हर मिलै तह सूरतन वेस।
1: जिस तरह इत्थे भी पाठ अगे बेनती कीती सी सूरतन नहीं सूरतन पाठ करना अद्धक ला के, ए भी पिछे भी एक पाठ आया सी सूरतन, इत्थे भी सूरतन ते आसा की वार विच भी सूरतन पाठ। हांजी
0: अणा को जाने आपनो एक है टेक आधार, रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार, रेण सगल या मन करै एऊ करम कमाए, हुक्मै बुझै सदा सुख नानक लिखिया पाए सलोक।
1: बेनती है कि अज असीं सोचदे सी कि कुछ समा पहला समाप्ति कर दिए, इत्थे आपां हुण समाप्ति कर सकते हैं पाठ ते अज दा पूरा हो गया, पर जे आप जी सहयोग दिओ जे आप जी दा हुक्म होवे तां आपां ठीक 9 बजे तक पाठ कर लैंदे आं, फिर सुखमनी साहिब जी ते पाठ कल तो संथिया प्रारंभ हो जाएगी। जे कहिंदे आं ते हुण आपां छुट्टी कर लैंदे आं, जे कहो ते 15 कु मिंट आपां ला लैंदे आं 9 बजे तक, कर लीए जी। चलो
0: सलोक। तन मन धन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे, नानक भ्रम पौ काटियै चूकै जम की जोह, पौड़ी तत्ता ता स्यो प्रीत कर गुण निद गोबिद राए, फल पावहै मन बाछते तपत तुहारी जाए, त्रास मिटै जम पंथ की जास मन जास बसै मन नाओ, गत पावहै मत होए प्रगास महली पावहै ठाओ, ताहु संग ना धन चलै ग्रह जोबन नह राज, संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज, ताता कछु ना होई है जो ताप निवारै आप, प्रतिपालै नानक हम है आप है माई बाप सलोक। थाके बोह बिद कालते त्रिपद ना त्रिसना लाथ, सांच सांच साकत मुए नानक माया ना साथ, पौड़ी थत्था थिर कौ नहीं काय पसार हो पाव, अनक बांच बाल छल करहो माया एक उपाव, थैली संच हो श्रम करहो थाक पर हो गा बार, मन कै काम न आवई अंते अवसर बार, थित पाव हो गोबिद भजहो संत।

गुरमुख त्रापे सलोक धर जियरे इक टेक तू लाहे बिडानी आस नानक नाम त्याई कारज आवै रास पौड़ी तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बा।

धीरज जस सोभा तह बनिया, हर हर नाम श्रवण जह सुनिया, गुरमुख जह घट रहे समाई, नानक तह जन मिली वडाई। सलोक नानक नाम जप जपिया, अंतर बाहर रंग गुरपुरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक पर है ते नाही, जा कै मन तन नाम बसाही, नाम निधान गुरमुख जो जपते, बिख माया मह ना ओए खपते, नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। सलोक पात राखी गुर पार ब्रह्म, ताज पर पंच मोह बिकार, नानक सो आराधिय अंत ना पारा वार। पौड़ी पप्पा पारमित पार ना पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जप है मिल साधु, पार पच त्रोह मोह मिट नाई, जाको राखो आप गुसाई।

जी के हजूर पंचामृत कड़ा प्रसाद हाजिर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरतौण दी आ गया बख्शो। समूह संगत दियां हाजरियां पिटावां दर

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की, जो प्रभ को मिलबोच है खोज शब्द में।

चढ़े सो उतरे, जो शरदा कर सेव दे गुर पार उतारन। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है,

असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल भख खाहे असंख निंदक सिर कर है भार नानक नीच कह विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुत्ति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाइया।

अपी है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अबरण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजाह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग पर्याति छंद, नमो सर्वमाने समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ते स्वरूपे परपंगी परमाथे, समस्ते बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे सुवरंग परम रूपे, नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे, नमो राज राजे सुवरंग परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तं इसनानं, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंतर जंतरं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता, परम परम परमेश्वरं प्रोच्छ पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अचेदी अपेदी अनामं अकामं, समस्तो पराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी शांद, जले हैं थले हैं, अपीत हैं अपेय हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, पुजंग पर्यात शांद, अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे, नमो सर्व माने समस्ति निदाने, नमस्तवं निरनाथे, नमस्तवं परमाथे, नमस्तवं अगंजे, नमस्तवं अपंजे, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहे, नमो माह माहे, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोखे, नमो सर्वरोगे, नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं, नमो सर्वपीतं, नमो सर्वज्ञानं, नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं, नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृश्यं, नमो सर्वकृसं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद, अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रूवाल छांद त्वय प्रसाद, आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रे साल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रांगना रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश औरणा पेश जाकर रूप रेख नाराग, जतर तत्र दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग, नाम काम बेहीन पेखत ताम हू नह जाहे, सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तताहे,
एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव भेव ना जान ही जिह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्ब बिसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अभूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही बहुचित मद भार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास।

ബാലാണ്, ഇന്ദ്രാണ് ഇന്ദർ ബാലാണ്, ബാല് രംഗാണ് രംഗ് കാലാണ്, കാല് അണുപൂത അംഗ് അബ അപംഗ് ഗത്മിത അപാര ഗുണഗണ ഉദാർ മുന ഗണ പരനാമ നിർഭയ നികാമ അത് ദുത് പ്രചണ്ഡ മിത് ഗത് അഖണ്ഡ അലിസ്യ കർമ്മ അദൃശ്യ ധർമ്മ സർബ ഭാര നാഡയ അണ ഡണ്ഡ ബാഡയ ചാചരി ഛന്ദ ത്വയ പ്രസാദ ഗോബിന്ദേ മുകന്ദേ ഉദാരേ അപാരേ ഹരിയങ് കരിയങ് നിർണാമേ അകാമേ പുജംഗ് പര്യാത് ഛന്ദ ചത്തര ചക്കര കർത്ത ചത്തര ചക്കര ഹർത്ത ചത്തര ചക്കര ദാനേ ചത്തര ചക്കര ജാനേ ചത്തര ചക്കര വർത്തി ചത്തര ചക്കര ഭർത്തി ചത്തര ചക്കര പാലേ ചത്തര ചക്കര കാലേ ചത്തര ചക്കര പാസേ ചത്തര ചക്കര വാസേ ചത്തര ചക്കര മാനയായ ചത്തര ചക്കര ദാനയായ ചാചരി ശാന്ത നാ സത്രായ നാ മിത്രായ നാ പരമംഗ് നാ പിത്രായ നാ കർമ്മംഗ് നാ കായേ അജന്മംഗ് അജായേ ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथ्वी सै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आ शोक वरणै के सर्वा अपरणै के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चितरंग बेहीनय के एकय अधीनय के रोजी रजाकय रहीमय रिहाकय के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्या है के सर्वत्र दान्या है के सर्वत्र गौना है के सर्वत्र पौना है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र तराण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वत्र जाप्याय के सर्वत्र थाप्याय के सर्वत्र भानय के सर्वत्र मानय के सर्वत्र इंद्रय के सर्वत्र चंद्रय के सर्वं कलिमय के परमं फहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुस्नुल वजूह है तमामुल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदा मैं गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंग आदि रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुबं सर्वभागे सो सर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप है अचेज है अछूत है के नरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है
अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अभूत है, अदूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अभक्त है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटाह है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट, शांत, त्वय, प्रसाद।

सर्वं कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्तार सावल छांद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बिहस्तुल निवास है के सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो बेपूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मद पार छंद त्वय प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण परनाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण परनाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धार तुरास आ जान बाहु एकैस दाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज ना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन तुट भंडार अन थट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ब उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्ब पास्या है सर्ब नास्या है करुणाकर है बेस्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है पार ते पार है करुणा कर है अजपा जाप है अथपा थाप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है बेस्वंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरगंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे
नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नारंगे नारूपे नारेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे को कर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरं परनासी करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बेपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सोवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मत को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद न्यावत शीस ना जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखै वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखै पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजार क देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखै सुध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुरजान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मै कर पर्वत पंख हले ना हलैंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलैंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलैंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनेंद निसाचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जल मै थल मै पल ही पल मै सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहुपुंज खपैंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपैंगे मानव इंद्र गजिंदर नरादप जौन त्रिलोक को राज करैंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरैंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पत अंत फसे जम फास परैंगे
ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਗ ਤੇ ਨਰ ਫੇਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋਉ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਤ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹਾਉ ਸੁਣ ਲਿਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਨ ਪੂਜ ਧਰਿਓ ਸਿਰ ਕਾਹੂ ਲੈ ਲਿੰਗ ਗਰੇ ਲਟਕਾਇਓ ਕਾਹੂ ਲਖਿਓ ਹਰ ਅਵਾਚੀ ਦਿਸਾ ਮਹਿ ਕਾਹੂ ਪਛਾਹ ਕੋ ਸੀਸ ਨਿਵਾਯੋ ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਕੋਉ ਬੁਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਪਸ ਕੋਉ ਮਿਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਾਉ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਘਾਵਹੋ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਾਰ ਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕਉ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਹੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ ਜੋ ਬਾਰ ਚਾਹਉ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਆ ਹੈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਆ ਹੈ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੁਜੈ ਉਬਰੀਐ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜੂ ਕਰੀਐ ਹੋ ਰੱਛਾ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼

जानै। जब उदकरख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम।

ती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा ना जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार असिखे संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे

काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारि हो ताके ताप तनक मह हरि हो रिद्ध सिद्ध घर मोह सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै न कोई एक बार जिन तुमै संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन शुभ राता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को छाय करता श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जो याहे सो रसना पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई संबत सत्रह सहस पनिजै अर्ध सहस पुन तीन कहिजै भादरव सुदि अष्टमी रविवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया

मन जिनि वसाया। कह नानक आनंद हुआ सत गुरु मैं पाया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार, ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। घर ता तेरा सब किछ है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संता हो, शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन काओ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया। एस नाओ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बज हो, क्या करे वेचारिया।

जी अजंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान आए। आख है ता वेख है सब तू है, जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चूका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार ताज त्रिसना, बहुत नाही बोलना। खन्या हो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चल है सुवामी। होर क्या जाना गुण तेरे,

गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मा समाले। आप छाड़ सदा रहे परने, गुर बिन अवर ना जाने कोए। कहे नानक सुनहु संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त ना पावे। पावे मुक्त ना होर थै कोई, पुछो हो बिबेकी आ जाए। अनेक जूनी भरम आवे, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर

कच्चे सत गुरु बाज हो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछू ना जानी।

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासाय हुई सहाये। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुई सहाये। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुई सहाये। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन दिठ कीता। तिना प्यारियां सच्यारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सुवासां नाल निबाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतहै बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाये। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है। आप जी दी महान कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंज बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पड़ी सुनी बाणी दा फलादेश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते परवान करनी सब नू अपने दरो घरो नाम दी दात गुर सिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके करतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां प्रदान करनियां। आप जी दे चरणां च अरदास बेनती है महाराज भाई हरजीत सिंह तिन्हां दी शरीरक तंदरुस्ती वास्ते
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਗਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਭੰਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु झटिया तुद डिठे सच्चे पाति साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाति साह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम वाहे गुरु साहिब जी राग सूही छंत महला पहला घर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद

सत्संग जी अंतर्गत होके नाम नूं सुनन करना जीओ नाम चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल दी धड़कन है उथे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उथे सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं देना जीओ जिन्हां प्राणियों नूं शब्द सुनदे है उन्होंने शब्दों विच भी ध्यान रखना जीओ जिन्हां प्राणियों का अभ्यास नाम सुनदा नहीं है जीओ उन्हां नूं कृपा करके बेनती है कि श्वास अंदर नूं जांदा वाहे फील करना श्वास बाहर नूं आउंदा गुरु फील करना इस तरह अपने सास ग्रास अंतर्गत होके सिमरन करते रहना जीओ दो तीन मिनट मगरों फिर आप रसना नाल जपांगे जीओ कृपा करके नेत्र सबने बंद रखने जीओ।

जोग शब्दों ज्ञान शब्दों वेद शब्दों ब्राह्मण है, खत्री शब्दों सूर्य शब्दों शूद्र शब्दों प्राकृत है, सर्व शब्दों एक शब्द जो जाने पे नानक ताका दास है, सो निंदे महला दूजा एक सर्वदेव दे द्वाता आत्मा ता बात जो जाने पे हो नानक ताका दास है, सो निंदे महला पे

नानक सुन हो संत हो साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द कार सपागे शब्द वाजे पंच दूत तुद वास कीते तुर करम पाया तुद जिन का कह नानक ता सुख हुआ आनंद सुनो बड़ पागी हो

0: सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चारण लागे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तुद आगै अरदास हमारी जियो पिंड सब

अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाये वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासैं हुई सहाये अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै ताए सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह।

दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासुन दास कह जन नानक

अगनति अतुल ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, सेख फरीदै खैर दीजै बंदगी। विसर नाही दा तार अपना नाम देह, गुण गावा दिन राते नानक चाव एह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, तीर्थ यात्रा समय न एक स आबत सवै, काहू साधु पाछे पाप सबन के जात हैं। जैसे नृप सेना समसरना सकल होत एक।

तीर्थ यात्रा समय न एक स आबत सबै काहू साधु पाछै पाप सबन के जात है। जैसे नृप सेना समसर न सकल होत एक एक पाछे कई कोट परे खात है। जैसे तो समुद्र जाल बिमाल बोहित बसै

केस बन गए ने तारे उथे सिंह दे जी केस बन गए ने तारा उथे सिंह दे ऐसा महल है जो सिखी दा उसारिया केस बन गए ने तारा उथे सिंह दे ऐसा महल है।

सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ जप तप सं

वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा।

कर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभा

जिस पास बैठिया सो ही है, सबना दा वेसा हो सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी, राग सूही